0: आप खामोशी से वेट करें कि अगला लफ्ज क्या है. रंजन विनोद फ्रॉम लंदन, हैप्पी यू एंजॉयड योरसेल्फ, नमस्कार टू ऑल द लिसनर. बहुत खूब
1: प्रवीण जी, वेलकम बैक. आप आए तो इस एफएम में बाहर आ गए. सुहाना सफर ये मौसम हसी, ये गाना फिल्म मधुमती का है जिसको मुकेश ने गाया है और जिसकी जिसको शैलेंद्र ने लिखा है और जिसकी धुन शैली चौधरी ने बनाई है. ये गाना दिलीप कुमार पे फिल्माया गया है, उसके साथ पिचंदमाला भी ये मूवी में थी. गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
0: मैं देख रही हूँ प्यार अली भाटिया बहुत खुश हैं. जी हाँ, अच्छी बात है. और रमेश हरिया ने कहा है कि वेलकम बैक, आपका सफर सुहाना ही रहा होगा. जी सफर समय अगर आप SGR में बैठ जाते हैं 5.5 घंटे तो ठीक है. आई मीन बहुत आहिस्ता चलती है, वो मुझे पसंद है कि आहिस्ता चले और ज़मीन पर रहे. समय जो चीज़ ज़मीन पर रहे उससे खौफ नहीं आता, जो हवा में उड़े ना उससे खौफ आता है. दिनेश पोपट सिडकप लंदन से, वेलकम टू द हॉट सीट. यू आर मिस्ड फॉर द डेज यू आर नॉट हियर. नाइस स्टार्ट टू द प्लेलिस्ट. आई होप इट कंटिन्यूज द सेम एरा. दिनेश पोपट कभी कभी कुछ लोग हैं यंगर, वो मांगते हैं उस तरह उस दौर के गाने जैसे कि 70 के हुए, आखिरी 70 की दिहाई के भी, तो उनको भी ज़रा खुश करने की कोशिश करती हूँ. ML विश्वकर्मा, मिलाद मुबारक. क्या बात है ML विश्वकर्मा, मुस्लिम भाई बहनों को ईद उन मिलादुन नबी मुबारक. फुल फॉर्म ऑफ हेलमेट क्या है? हेलमेट H हेड, E आईज, L लिप्स, M माउथ, E टीथ. ये हेलमेट इन सबको सुरक्षित रखती है. क्या बात है. रसिला, वेलकम बैक मिस्ड यू, आई एम श्योर यू एंजॉयड द वेल डिजर्व्ड ब्रेक. अच्छा होता है अपने शहर से दूर चले जाना. लवली स्टार्ट वंस अगेन ऑफ द मिड वीक म्यूजिकल जर्नी. परवीन जी, एन आई फोन आर्ग्यूमेंट एंड्स इन अ फैमिली ट्रेजेडी, अ फैमिली डिस्प्यूट ओवर एन आई फोन. अच्छा, रिपोर्टेडली एंडेड विद अ डेवस्टेटिंग लॉस इन महाराष्ट्र. 19-year-old son went to the edge of a hill following an argument with his parents. As his father tried to bring him back, both fell from the hillside. His mother also fell while trying to respond to the situation. All three lost their lives. Samin, dekhe na, wo ladka 19 saal ka hai. Aapko pata hai ki unka khoon josh maarta hai. एक आईफोन की खातिर आप उसको नाराज़ कर रहे हैं. अगर बिठा कर समझाते या तो देना नहीं था, तब भी दे सकते थे या बाद में दे देंगे. बच्चे कोई ऐसे नहीं होते, लेकिन ये गुस्सा दिलाना कि वो आत्महत्या पर हो जाए आमादा, ये तो बहुत गलत बात है. कभी कभी माँ बाप सोचते नहीं हैं कि बच्चा क्या कर बैठेगा. रसीला कहती हैं, द ट्रेजेडी इज अ हार्ट ब्रेकिंग रिमाइंडर दैट नो फोन, नो EMI, नो मटीरियल पोसेशन इज वर्थ अ ह्यूमन लाइफ. एन आर्ग्यूमेंट कैन एंड, अ फोन कैन बी रिप्लेस्ड, अ लाइफ कैन नॉट. रसीला, सो वेल रिटन, बहुत शुक्रिया. और ईद मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक. आपने कहा है नीला शेत, बहुत अच्छे आपने भी वेलकम किया है. यस, बस सफ़र ज़रा लंबा था.

0: समय ना हम मिस करने वाले ही थे अश्विन दोषी को, एन वक्त पर मिल गई है लाइन जी अश्विन
1: जी। ये तो सुपरहिट फिल्म थी मुनीम जी।
0: अच्छा ये मुनीम जी का है?
1: यस, देवानंद देवानंद गा रहे हैं स्क्रीन पे।
0: अच्छा
1: साथ में थी नलिनी जयवंत और म्यूजिक एस डी बर्मन और गीत सभी साहिर लुधियानवी ने लिखे थे।
0: जी एस डी बर्मन नॉट आर डी, ओके
1: नो नो एस डी एस डी या एंड फिल्म बहुत चली परवीन जी।
0: क्या बात है, गाना भी इतना ब्यूटीफुल है।
1: यस गाने सभी
0: मसरूर करता है।
1: यस यस एंड परवीन जी यू आई होप यू हैड ए गुड हॉलिडे।
0: जी अश्विन मुझे अच्छा लगा सर समंदर के किनारे बैठने का भी अच्छा, बादल छाए रहे काफी okay. देर यू नो हम
1: yes.
0: कहते हैं कि नीला आसमान हो नीचे बैठे लेकिन कभी कभी कवर भी हो जाता है। बंदे मिल गए अच्छे अच्छे, इट वॉज अ गुड ब्रेक।
1: यस
0: जी जी काफी रिलैक्स किया।
1: और पर जी जो आप नहीं थी तो जो प्रोग्राम प्रेजेंट किया दिन वो अच्छा था, गुड था, वेरी गुड
0: गुड।
1: तो जो भी आप अरेंज करके गई थी कि किसी
0: नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये रहमत का काम था। रहमत बहुत हार्ड वर्क करती है। थैंक
1: यू मैम, कैन यू थैंक यू
0: आई विल
1: ऑन माय बिहाफ
0: डेफिनेटली आई विल थैंक यू।
1: सभी गाने सभी मिक्स किया था, ओल्ड न्यू का और एंटरटेनिंग था। तीन दिन मैंने सुना और मजा आ गया।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: तो मुझे पूछना था कि आप
0: जी नहीं।
1: तो रहमत ने किया है तो अपना थैंक्स बोल देना।
0: जरूर कहूंगी, शी डिजर्व्स इट। थैंक यू अश्विन दोषी। और अब देखें क्या है, नीला शेठ का मैसेज पढ़ दिया मैंने और सोनल मोदा, ये न्यूज मैंने भी पढ़ी थी परसों, सो सैड। वो जो तीन बंदे चल बसे हैं सोनल, प्रोबेबली यू आर रिफरिंग टू देम, बहुत दुख। समय पहले पहले जब फोन निकला था तब भी कुछ बच्चों ने आत्महत्या की थी क्योंकि माँ बाप उनको ले के खरीद कर नहीं दे सकते थे, इतनी नहीं थी उनके पास। लेकिन समय ये एक एक पर अब ये देखें तीन एक घर के लोग चल बसे थे, व्हाट अ बिग ट्रेजेडी। और रसीला कहते हैं ऑलवेज थिंक ऑफ अब्बा शबाना आजमी रिकॉल्स फादर अब्बाजी, कैफी आजमीज प्राइड एज शी रिसीव्स ऑनररी डॉक्टरेट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा आर्ट्स एंड सोशल चेंज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है कि शबाना आजमी उनको मिली है डॉक्टरेट, समझनी वो जो पीएचडी होती है। समझ फिर ये पीएचडी लेकर लोग अपने आप को डॉक्टर कहने लगते हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या इन्होंने भी 14 साल पढ़कर डॉक्टर की डिग्री कमाई है कि कहीं और उनका योगदान है। अगर है तो फिर डॉक्टर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए था। ओके कपिला ढींगरा, जुमा या ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। मे बी द पोरंस पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड एन आईफोन। कपिला डिंगरा बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा ना जैसे बच्चे को बिठा कर समझाओ, मैं तो कहती हूँ लोन भी ले लो और दे दो उसको, क्योंकि इस कदर जोश में होते हैं, जोशीली है ये उम्र और गुस्सा भी बहुत आता है, इसलिए पेरेंट्स कई बार इग्नोर करते हैं साइंस, दैट इज व्हाई इट लेड टू दिस ट्रेजेडी।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत परवीन जी। शुरू में ही मेरा मनपसंद गाना लगा दिया आपने मुकेश का सुहाना सफर, और तो मजा आ गया। ईद मिलाद की सारे लिसनर्स और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यूं ना समझ कि उम्र छीन लेगी खूबसूरती तेरी, यूं ना समझ कि उम्र छीन लेगी खूबसूरती तेरी, मखमल में सिलवटें भी बड़ी दिलकश लगती हैं। शुभ प्रभात।
0: क्या बात है, मखमल में भी सिलवटें बड़ी दिलकश लगती हैं। कमाल कर दिया मंजुला विश्वकर्मा। हमारे साथ हैं कृष्ण सरवे फ्रॉम लंदन। जी कृष्ण सर।
3: हेलो।
0: जी जी कृष्ण, बात कीजिए।
3: गुड मॉर्निंग प्रवीण जी।
0: गुड मॉर्निंग।
3: आप फैमिली की डेथ बारे सुन के बड़ा दुख हुआ
0: जी, पर क्या क्या किसका कसूर किसका है?
3: नहीं प्रवीण जी, बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं मिली होती है। आपको पता के माँ बाप की हैसियत नहीं है ये काम करने की, क्यों बोर करते हैं माँ बाप को जी, और सिचुएशन में डाल देते हो। यदि आप बिलीव नहीं करते मुझे 10 रुपए की भी जरूरत होती तो मैं अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बोलना कि ये नहीं है तो मैं बनता ही नहीं था।
0: राइट राइट, ये बात है कि
3: कभी आता ही नहीं था उसमें कुछ रखे गए, उनको टेंशन हो गया। हमें पता है घर वालों की क्या सिचुएशन है हमारे लिए, वो नहीं कर सकते।
0: राइट बिल्कुल।
3: ऑल इंडिया टूर के लिए मुझे मैं गया था 70 पे। हेलो।
0: जी जी हम सुन रहे हैं।
3: हाँ प्रभु जी, मैं ऑल इंडिया के टूर पर गया था तो उन दिनों 2000 का खर्चा था उसके, दो होने के बाद 2015 होते थे 70 में। प्रभु मेरे को 400 रुपए मिले जी। आप बिलीव नहीं करते बॉम्बे जाते जाते वो खत्म हो गए 400। बाकी के 20 दिन मैंने बस ऐसे गुजारा किया ही नहीं होता।
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी जी बिल्कुल, ये बात है।
3: नहीं किया पेरेंट्स को के।
0: राइट राइट बिल्कुल
3: जी।
0: अच्छा कृष्ण सरोवर ने जो बात की है थोड़ी देर के बाद उस पर कमेंट करते हैं।
4: East FM Kenya's premier Asian mix.
5: It's 10:28.
4: When your family's name is on the door, business is personal. You need to govern wisely to protect what you've built, fund seamlessly to keep your daily momentum going, expand fearlessly into new markets and offshore opportunities. Plan ahead so the next generation can succeed proudly and partner deeply with experts who understand the weight of your legacy.
6: Stanbic Family-Owned Business Banking, where family means business. Let's write the next chapter of your family-owned business together. Visit www.stanbicbank.co.ke today. Stanbic Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
4: More of Kenya's premier Asian mix, East FM.

0: और समय अगर आप बच्चों को बचपन से समझाएं कि किसी दुकान के अंदर जाते सार आपने 2000 चीजें ट्रॉली में नहीं डाल लेनी, आपको बताना चाहिए कि आपकी हद कहाँ है। सम बच्चों को हदें बताएं, उनको बताएं कि लिमिट है, ये लिमिटलेस तो नहीं हो सकता ना, उनको हकीकत दिखाएं। इसलिए फिर बच्चे ओके, उसके बावजूद अगर बच्चा इसरार करता है तो फिर आपको पता है कि उसकी मांग भी पूरी करने की ज़रूरत होती है। और सना काना मिलादुन नबी, आपने सबको मुबारक कहा है। आई कंकर विद अश्विन दोषी, द प्ले लिस्ट ईस्ट FM पर सलमा अहमद, आपने कहा है कि इट वॉज सो गुड, कि आपने बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छी बात है। और अब चलते हैं ज्योति फ्रॉम रूरू, विदाउट यू आई डोंट स्विच ऑन द रेडियो ऑन, आई जस्ट स्विच इट ऑफ, आई मिस्ड यू ज्योति। पता क्या ज्योति, एक्चुअली ऑन रखना चाहिए था रेडियो। कल्पना टॉकिंग अबाउट PhD, दीज डेज PhD इज ईजिली अवेलेबल फॉर अ फी, but most times these people do not confidently put doctor with their name. Maine dekha hai logon ko jinka doctory ke sath koi taluk nahi hai, bar bar apne naam ko dohrate bhi hain, logon se bhi kehte hain ki repeat karo, likhte bhi doctor hain. Okay, aapko PhD mili hai, uske sath rahe, us owner ke sath, पर प्लीज उनके साथ तो ना कंपीट करें जिन्होंने 14-20 साल पढ़कर तालीम हासिल कर द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स किया हो, आप उनके बराबर खड़े हो जाएं। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। कुलवंत ने कहा, पता है क्या, कृष्ण सर्वे की बर्थडे थी, जी जी जी, और मुझे पता है कि नीलम सर्वे ने मुझे मैसेज भेजा था और मैं वो पढ़कर भी सुना दूंगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन समन यहाँ पर आया है एक मैसेज, और वो है किसका, वो मैसेज है भास्कर पटेल, मैनचेस्टर में है समन। उन्होंने कुछ आपके लिए भेजा था और कहा था कि इसको सुना दें, लिसनर्स विल लव इट। चलिए ओके, ठीक है, हम करते हैं ये कोशिश कि आपके साथ वो भी सुना दें समय। लेकिन बात ये है कि आरफा फ्रॉम ओंगाटा रंगाई वो भी कॉल करने की कोशिश कर रही हैं। ओके, ये नहीं तो फिर देखते हैं कि भास्कर पटेल जो कहते हैं उनको बहुत पसंद आई है, आया है ये कलाम, कहते हैं सूफी कलाम है।
1: मंगन वाले मंगदे ने दौलतां इस जहान दी।

0: ये समझ, जब 3 घंटे का मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ उसके दौरान मुझे सर्च करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके मैसेजेस पढ़ने, आपके कॉल्स रिसीव करने, आपके गाने आगे रखने हैं. Amina from Manchester, so good that you're back and happy birthday to Krishan Saroy. I wish him all the best and have a good, healthy life. Amina from Manchester, thank you so much. Ranjan Vinod from London, Krishan Saroy ke liye bahut duaein bheji hain. Shabbir Ahmed, many, many happy returns of the day to Krishan from London. May he have good health, Amin. Ye kaha hai Shabbir Ahmed ne. और तलत महमूद का गाना तुमको फुर्सत हो, वन ऑफ हिज बेस्ट, आई एग्री शबीर. प्यार अली भाटिया.
1: रवि जी, तुमको फुर्सत हो, ये गाना फिल्म बेवफा का है, 1952 की मूवी है, जिसको तलत महमूद ने गाया है और जिसको सरसहा सलानी ने लिखा है और जिसकी धुन अल्लाह रखा खुरसी ने बनाई है. ये गाना राज कपूर में फिल्माया गया है. ये गाना बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया. ब्यूटीफुल गाना
0: सरशार सलानी, हमें मुश्किल है इस टंग ट्विस्टर भी, सरशार बहुत अच्छा नाम है. और अमीर अली राणा, डॉली पार्टन जी, मैंने कहा आज कि बेचारी डॉली पार्टन, सामने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर कंट्री म्यूजिक डॉली पार्टन, उनकी वफात हो गई है.
2: परवीन जी, कृष्ण सरोय जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. भगवान उन्हें सदा खुश रखें और लंबी स्वस्थ जिंदगी दें. हम उन्हें शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं.
0: मंजुला विश्वकर्मा जैसे दिल से दुआ देती हैं और ग्रीट करती हैं, तो आप सबको कहना चाहिए मेरी बर्थडे ग्रीटिंग मंजुला विश्वकर्मा पढ़ेगी. कमाल है, थैंक यू मंजुला विश्वकर्मा. और आगे जो है समझ, मैंने एक और भी आपसे पूछना था वंदे मातरम के बारे में, कि क्या है झगड़ा ये वंदे मातरम का. आगे पूछती हूँ.

0: और ब्रो कृष्ण सरोए एमएल विश्वकर्मा ने आपको विश किया है, हैव अ फैंटास्टिक डे भाई साहब कृष्ण सर। और समय अब चलते हैं किसके पास, एक और विश आई है और वो है अमीर अली राणा की जानिब से, कृष्ण सरोए को। रितु गुप्ता भी आई हैं।
1: प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण जी आपके बिना एफएम इतना सोना लगता है, जैसे कि ऐसे ही लगता है जैसे बटन ऑन किया तो सुनते जाओ, ये यही फर्क होता है हियरिंग और लिसनिंग में। मैं चाहे वही कॉल करूं ना करूं, जब कभी मजबूरी आती तो नहीं सुनती, तो बड़ा मेरे को आपकी एब्सेंस फील होती है। आप नहीं आते तो मेरे को आपकी जो सेहत की पहले फिक्र होने लगती है। और दूसरा प्रवीण जी, मेरी तरफ से वो कृष्ण सरोए जी को, वो जीनियस पर्सन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे उनके जीवन में ढेरों खुशियां हो और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती भगवान उनको प्रदान करे। और क्या बोलूं रितु गुप्ता,
0: बहुत अच्छा बोला है, ग्रेट बोला है, किसी का दिन बना दिया है आपने रितु गुप्ता, और क्या बोलने की जरूरत है। और रितु थैंक यू सो मच इंडीड। आप यूज्ड टू है ना कि सुनने की एक आवाज, बस ये है बात। टुडे इन हिस्ट्री क्या हुआ है, और कहते हैं जी हाँ यासर, अगस्त 26 का दिन था, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज द हीरोज डे इन नामीबिया, मेकिंग अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट्स मॉडर्न लिबरेशन हिस्ट्री। आज समय वो आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए नामीबिया, अपनी आजादी के दिन को हीरोज डे का नाम दिया है। और 1669 भाई दया सिंह जी is born 1669, celebrated in Sikh history as the first of the Panj Pyare, five beloved ones chosen by Guru Gobind Singh ji, 1699 mein. 1669 mein Bhai Daya Singh ji paida hote hain, jo ki 1699 mein phir shamil kiye jate hain Panj Pyaron mein. Bahut acche सिख ब्रादरान के लिए तो ये बहुत होगा, कम्युनिटी के लिए। 1910 आज के दिन मदर टेरेसा इज बॉर्न। आइए कौन ये बोजाजू, द नोबेल पीस प्राइज लोरिएट एंड भारत रत्न रिसिपियंट वाज बॉर्न ऑन दिस डे। मदर टेरेसा का नाम भी देखें कैसा था। लेटर डेडिकेटिंग हर लाइफ टू द पुअर इन कोलकाता थ्रू द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आज भी हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी, समझने इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कृष्ण सरोए के लिए नीला शेठ ने बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं। मीरा हैव अ ब्लेस्ड वेडनेसडे टू ऑल योर ब्यूटीफुल बेमिसाल अंदाज फैमिली, हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण सरोए एंड मैन मे अल्लाह ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, may his day be filled with joy, love and beautiful moments. Personally Parveen ji, I missed you, welcome back. From Meera Chavda, bahut bahut dhanyawad, khush kar diya hai aapne.

0: क्या बात है, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं, बहुत सादा बट कमाल का कलाम। अब कृष्ण को सनाकाना आपने भी विश किया है, सनाकाना ने, और केक की तस्वीर भेजी है। मुकेश का ये मास्टरपीस है, किसे याद रखूं, ये किसने कहा है? शबीर अहमद। शबीर बिल्कुल आई एग्री विद यू। और आज काफ़ी आपने ब्यूटीफुल गाने सुने। मुझे एक बात बता दें प्लीज, वंदे मातरम पे खेंचातानी हो रही है। अब कोई कहता है कि सारा गाना पूरा मुकम्मल कंप्लीट सुनाओ और सुनो, मगर कांग्रेस पार्टी जो भारत की है, वंदे मातरम पूरा नहीं सुनाना, सिर्फ दो स्टांजे, दो पैराज है ना, वही सुनेंगे। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं शिवा कुमार, उन्होंने भी कहा है कि हम भी सिर्फ दो स्टांजा सुनेंगे, दो स्टांजा काफी हैं वंदे मातरम के। तो समझ, वंदे मातरम में ये अचानक क्या हुआ है? पहले तो कभी नहीं सुना था कि कोई तकरार हुई हो या कोई बहस हुई हो वंदे मातरम पर। इसकी जड़ क्या है, क्या हो रहा है? वेरी डिसेंटली बताइएगा, गुस्सा खा के नहीं बताना, लेकिन हमें भी पता चले हकीकत क्या है।
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. Asian Mix.
2: It's 11:19.
1: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Kuduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
3: East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देख

0: हर कोई अपने आप को राजकुमार समझता है। समन पहले करते हैं अमीना के पास।
1: कुछ यादगारें शहरे सितमगर ही ले चलें, कुछ यादगारें शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चलें। रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खा के कूचाए दिल भर ही ले चलें। ये कह के छेड़ती है हमें दिल गिरफ्तगी, ये कह के छेड़ती है हमें दिल गिरफ्तगी, घबरा गए हैं आप तो बाहर ही ले चलें। इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, इस शहरे बेचराग में जाएगी तू कहाँ, आ ए शबे फिराक तुझे घर ही ले चलें, आ ए शबे फिराक तुझे घर ही ले चलें, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। थैंक यू परवीन जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: आए हैं इस गली में तो पत्थर भी ले चले, क्या बात है, बहुत अच्छे अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ओके तलत महमूद की के गाए हुए गाने की फरमाइश हुई है अमीर अली राना। कोशिश करती हूँ। और एक क्वेश्चन मंजुला गोरसिया ने भी भेजना था, अभी तक तो मैं देख नहीं रही, लेकिन उन्होंने पूछना है कोई बहुत सवाल है, कहती वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। कोई बात नहीं, पहले एक गाना सुनते।

दिनेश पोपट सिटकप, आपने कहा है कि दिलीप कुमार ने, अमिताभ बच्चन ने नई पीढ़ी समिन जवान पीढ़ी जो जेन जी है उनके बारे में लिखा है कि ये जेन जी किस दिशा में जा रहे हैं। उनकी बात का यही है मतलब के निचोड़ कि जेन जी खराब है, जेन जी संस्कार खो बैठे हैं, जेन जी किस दिशा में निकल पड़े हैं। समझ, दिशा में वो सही दिशा में है, अपना हक मांग रहे हैं, सदियों से जो हमने नहीं दिया वो हक मांग रहे हैं। बांग्लादेश में भी जो जवानों ने हक मांगा था, कई और देशों में हक मांगना चाहते हैं लेकिन बंदूक से डर कर वो बैठे हुए हैं। लेकिन हक जहां मांग सकते हैं उनको मांगना चाहिए। और अमिताभ बच्चन साहब जो कह रहे हैं उसके साथ मैं तो खैर इत्तफाक नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हमने अपने जवानों को क्या दिया है, इस तरह के इम्तहान दिए हैं जो वो पास ही ना कर सके, ऐसी यूनिवर्सिटीज दी हैं जहाँ के रिश्वत के बगैर उनके लिए दरवाजे ना खुलें, ऐसे माहौल दिया है तालीम का जहाँ वो मुंह खोलते हैं आज़ादी से अपने ख्याल का इजहार करते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। ये माहौल नहीं था जिसके लिए हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ी थी जंग। सो ये विषय दिनेश पोपट बहुत बड़ा है और ये इनकी जो बात है अमिताभ बच्चन की वो कुछ लोग मानेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं। खैर, आपने रोशन कान जी, थैंक यू सो मच इंडीड। और मंजुला गोरसिया का आ गया है, क्या कहती हैं कि पता है क्या, ये तो मुझे लगता है कि पहले कर भी दिया है। जी हाँ, ये कर चुके हैं लेकिन उन्होंने वापस भेजा है।

0: छोटी जी एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि भगवान राम जो 14 साल वनवास कट के रावण नु मार के जो अयोध्या आन लगे रामेश्वरम तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई साहब रावण नु मार दिता है, लंका हम साडे कब्जे दे विच है ते असी इत्थे रह जांदे हां, की पता अयोध्या दे विच भरत ने कब्जा कर लिया होवे, साडा वो वेलकम करे या ना करे, सानू राजगद्दी मिले या ना मिले, अयोध्या दे वड़न दे या ना दे। तो भगवान राम ने इक्को ही कहना जवाब दिता कि जनन भ्राता लक्ष्मण ई स्वर्णमयी लंका मयम न रोचे थे, जननी जन्म भूमि च स्वर्गा तपि गृह से। ये लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण देखा जो सोने की लंका बनी है, ये मेरा मन नहीं पाती पे, जननी में जन्म देने वाली और जन्म भूमि ही इस स्वर्ग तो भी ऊपर है, तो इस करके मैं अपनी मातृभूमि अयोध्या च ही वापस जाना। रहेगा गल भारत माता की, हूँ जो फादर ऑफ नेशन बनाता 1947 तो बाद महात्मा गांधी नो फादर किस बिहार से बनाता, भारत दी सभ्यता तो तुसी देख लो पाकिस्तान में तक्षशिला नालंदा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ये साड़ी हिस्ट्री कदों की चली आ रही है, उदों तक किसी का फादर ऑफ नेशन बनाया नहीं किसी ने, ये हम बार बार के कहना मदर इंडिया या फादर ऑफ द नेशन, ये डिस्प्यूट कदों तक चलेगा ये सानू नहीं पता।
1: डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप कहते हैं कि फॉर्मल फंक्शंस पर, ऑफिशियल गवर्नमेंट फंक्शंस पर लंबा आपको अगर कोई तराना दे दिया जाए तो लोग कहेंगे नहीं इसको ज़रा एडिट कर दो, ज़रा छोटा कर दो, ब्रीफ कर दो, क्योंकि इट इज़ जस्ट प्रैक्टिकल कि आप एक छोटा जिसके अंदर आई थिंक 2 stanzas अगर हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं विच stanzas दे आर अप्रूविंग एंड विच stanzas आर दे थिंकिंग कि वी कैन रिमूव। उन्होंने सारा गाना नहीं कहा कि आई मीन सारा जो नगमा है उसका नहीं कहा कि छोड़ दें, कुछ stanzas छुड़वाना चाहते हैं, उस पर गौर किया जा सकता है, स्कॉलर्स कैन सिट एंड डिस्कस के क्या कर सकते हैं इसको, सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल टू प्ले एट ऑफिशियल फंक्शंस, मुझे ये लगता है। चंद्रिका वासंत गोसाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कहा है वेलकम टुडे, आई एम एंजॉइंग द सॉन्ग्स, ग्रेट। अब मंजुला गोरसिया का पूरा सवाल आ गया है, कहते ही वॉज अ फेमस एक्टर एंड अ बैड मैन ऑफ द इंडियन सिनेमा, ही मोस्टली प्लेड विलन इन राजेश खन्ना एंड मनोज कुमार फिल्म्स। समझ, इन्होंने मुझे जो तस्वीर भेजी है ना, यू वुड रिकग्नाइज हिम। हिज सन इज अ film producer and he has made films like Bol Radha Bol 92. His first film was Shaheed 1965. Today is his death anniversary, 47th. Aaj 47 saal pehle ye ek bade acche adakar the, aur bure aadmi ka bhi villain ka bhi role ada inhone kiya Rajesh Khanna aur Manoj Kumar ki filmon mein. इनके बेटे भी करते हैं प्रोड्यूस फिल्म्स, नाम क्या है इनकी पहली फिल्म शहीद 1965 में रिलीज, तो नाम क्या हो सकता है। 07011061061 जुबैदा खानम।

सामिन, मुझे नहीं पता कि इनका नाम क्या है, लेकिन अभी अभी एक ऑप्शन जो आई है, सोनल मोदा ने कहा है कि इजी मनमोहन, आई एम नॉट श्योर, और सना काना ने भी कहा है मनमोहन। अगर दो तीन और मनमोहन आ जाते हैं तो समझ हो सकता है कि यही आंसर हो।

बिल्कुल डिफरेंट गाना है किशोर का. अब देखते हैं, टुडे इज हिज 14th एनिवर्सरी रहीम चाचा की, और क्या किरदार अदा किया था रहीम चाचा का. मंजुला गोरसिया के सवाल का जवाब आप दे रहे हैं. एक हंगल आंसर आ गया है डॉक्टर कृष्ण, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अवतार कृष्ण हंगल था उनका नाम, और जब तक मैंने इनकी फिल्में देखी मुझे लगा वो मुसलमान है. आई वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि वो जो रोल्स करते थे उनसे ऐसा ही जाहिर होता था. खैर, एके हंगल ही आंसर है. रितु गुप्ता ने भी एके हंगल कहा है. मिसेस धंजल, वेलकम बैक डियर परवीन, यू मस्ट हैव एंजॉयड योर हॉलीडे, वी मिस्ड यू अ लॉट. मनमोहन आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है. सोनल मोदा ने एके हंगल, सना काना एके हंगल, मतलब कि एके हंगल ही था. ये दोनों एक्टर्स की आज बरसी है, एक 14 साल पहले और एक 47 साल पहले.

अब आता है एक बहुत ही अच्छा मैसेज और ये है अवतार कृष्ण हंगल के लिए। कैसे ऊंचे पाए के अदाकार थे, सामने कितने कम अदाकार ऐसे हैं। तो इनकी कहते हैं जन्म, यासर कहते हैं इनका जन्म 1914 में हुआ, 26 अगस्त 2012 में आपकी वफात होती है। बिफोर एक्टिंग इन फिल्म्स ही फॉट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस 29 to 47, स्पेंड टाइम इन अ पाकिस्तानी प्रिजन इन कराची ड्यू टू हिज कम्युनिस्ट एंड पोलिटिकल अफिलियशंस आफ्टर पार्टीशन। अच्छा, पार्टीशन के बाद इन्होंने कराची के कैद खाने में वक्त गुजारा। ही वर्कड एज अ प्रोफेशनल टेलर इन पशावर एंड कराची बिफोर मूविंग टू मुंबई एंड डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू थिएटर एंड सिनेमा। क्या बात है, वाह क्या बात है, थैंक यू यासर। सब देखा किस कदर वो बिजी मसरूफ थे, पूरी जिंदगी उनको पता था उन्होंने क्या क्या करना है। मीना कुमारी, अमीर अली राना फ्रॉम फिल्म यहूदी, ये जो अभी अभी मैंने सुनाया है। और रेहाना तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू सिंग वंदे मातरम एट अ कांग्रेस सेशन एंड शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नोन टू हर फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। सो रेहाना तैयब जी आप वाकिफ होंगे, वो मुस्लिम, शी वॉज अ मुस्लिम लेडी, उन्होंने वंदे मातरम पहली बार गाया था और शी वॉज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन और हर रेंडिशन ऑफ वंदे मातरम वॉज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सिंबलाइजिंग यूनिटी पेट्रियाटिज्म अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स। रेहाना तैयब जीज पार्टिसिपेशन हाईलाइटेड इंक्लूसिव नेचर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट bringing together people from diverse backgrounds. She sang in 1923 session of the National Congress. ये कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने, मेहरबानी आपकी। और अब तक पता नहीं चला कि एतराज क्यों है, एतराज फॉर द सेकेंड जो स्टांजाज हैं दो तीन उन पर क्यों इख्तलाफ उठ रहा है।

0: और कल्पना ने कहा है कि इट इज सो सैड, एके हंगल स्पेंड द लास्ट इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन अटर पॉवर्टी। कितने उम्दा अदाकारों के साथ ऐसा हो चुका है कि आखिरी बरसों में वो मोहताज रह गए, समझ पाई पाई के लिए मोहताज हुए। ही वॉज पेनीलेस, सम पीपल फ्रॉम द फिल्म फ्रटर्निटी केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। एक हंगल के लिए कहते हैं कि लोग मदद, माली मदद करें, ये कहा है हमें कल्पना ने। बहुत शुक्रिया कल्पना। डॉक्टर साहब भी आए हैं, उनसे पूछते हैं।
1: परवीन जी, मेरा तो एक ही सवाल है कि जब आज़ादी से पहले अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सभी कम्युनिटी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध, सभी अंग्रेजों के साथ मिल के एकजुट होकर लड़ते थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, ना कि भारत की डिवीजन करने के लिए। अब ये जो गीत उनके अंदर जोश भरने के लिए जो बनाए जाते थे, और कवि के मन के अंदर कोई भी ऐसा धार्मिक उद्भावना नहीं होती थी कि इसको मुस्लिम ना गाए, सिंह ना गाए, हिंदू ना गाए, लाइक दैट। और वो गीत ये जो मतलब कि फ्रीडम फाइटर्स होते थे भारत को आज़ाद करने के लिए, जो मतलब कि लड़ रहे थे, उनके अंदर एक उत्साह और जोश भरने के लिए गाए जाते थे कि जैसे कि देही शिवावर मोहे ये शुभ कर्मन ते कब हो न टरूं, या मेरा रंग दे बसंती चोला, या वंदे मातरम, कि यह हमारा भारत है, हमारे भारत की खासियत यह है, भारत भूमि, भारत जन्म भूमि, जिसे आर्यव्रत भी कहा जाता था। तो सिंधु देश के नाम से भी कहा जाता था कि ये एक है, और यहाँ के जितने भी उस मिट्टी से पैदा हुए वो सब एक, और ये गीत उनमें उत्साह भरने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि भारत को डिवाइड करने के लिए। ये तो गीत बनने के काफी सालों के बाद, मैं कहा 50-60 साल के बाद जाके ये बात उठी थी कि एक अलग देश बनना चाहिए, तो वो काट दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि इसको किसी को भी गाने के लिए, ये जैसे हमारे मंदिर में वो जो गाना गाया, भजन गाया जाता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, कि ईश्वर में भी तू है और अल्लाह में भी तू, और सबको सद्बुद्धि दे। और मैं ये जो इस गीत का विरोध करते हैं, मेरा उनसे ये है कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे, बस।
0: बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो यूनिटी आप कह रहे हैं कि सबकी यूनिटी होनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी हो, क्योंकि सब ने देश की आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस किया, समझ कुर्बानियाँ की, लेकिन आज के मंत्री उठ के कहते हैं कि ये कोई धर्मशाला नहीं है इंडिया, ये सिर्फ उनके लिए है जो यहाँ पैदा हुए, लेकिन वहाँ पैदा होने वाले तो बड़े धर्मों के हैं, तो इस लिहाज से तो धर्मशाला भी हो सकती। लेकिन आजकल कहा जाता है कि नहीं, ये हर एक के लिए नहीं है।
2: It's 1221.
3: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: A leading paint manufacturing company is seeking to recruit a health and safety officer to develop, implement and oversee the company's environment, health and safety programs across its operations. Bachelor's degree in environmental science, engineering degree, occupational health and safety or a related field, and 3 to 5 years of relevant health and safety experience, preferably within a manufacturing or industrial environment, including at least 1 year in a supervisory capacity, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Qatar Charity Kenya is seeking to recruit 2 assistant cooks, certificate or diploma in catering or food production, and a minimum of 3 years collective experience in a school, institution or large kitchen required. Experience handling food for children is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
6: दिल की मूरत

और अल्फा उंगा टरुंगाई आपने क्या कहा है आपने कहा है कि देखो we love the music I'm really enjoying it लेकिन even I belong to the category that switches off हम भी एक बटन दबा देते हैं जब आप नहीं होते अच्छा शुक्र है कि रेडियो का बटन है कहीं बंदूक का नहीं खैर आपने कहा है कि हम नहीं सुनते अल्फा फ्रॉम गटर होंगे बहुत बहुत शुक्रिया आपका और समिन ये कहना था आपको कि आगे बहुत ही ब्यूटीफुल डुएट है लता मोहम्मद रफी साहब का एक पैगाम भी आ गया है आप सबको गुड आफ्टरनून टू परवीन जी एंड एंजॉयिंग द प्रोग्राम यास्मीन एंड मेजर वांजा यू मस्ट राइट वे यू आर टेक्सटिंग फ्रॉम वे यू आर मैसेजिंग फ्रॉम हमें पता हो चलना चाहिए क्योंकि आई थिंक आप भी केनिया में नहीं हैं सो टेल अस वे यू आर

और मेरे सिर्फ एक लिसनर हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि देखो आज आप स्ट्रगल कर रही हैं, आई होप यू फील बेटर सून, आई सी यू आर स्ट्रगलिंग विद योर कॉफ एंड सोर थ्रोट. समीन सिर्फ अमीर अली राना ने नोटिस किया है. मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि पता ना चले कि थोड़ा फ्लू का असर अभी भी है, 3-4 दिन से है, लेकिन आपने कहा मैं स्ट्रगल. एक्चुअली ये बात है कि जब तक आप अदरक का पानी और हनी पीते रहेंगे वो ठीक रहेगा, और जैसे ही आपने छोड़ा तो वो वापस आपको सताने लगेगा. फ्लू कोई बात नहीं, आप है ना साथ और इतना अच्छा म्यूजिक, और क्या चाहिए. एज फॉर द शो वी एंजॉय डिस्पाइट योर कंडीशन. ओके कुलवंत सोए, व्हाट अ लवली सॉन्ग, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे. जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, और आगे का भी आपको पसंद आएगा. कुलवंत सरोए आपने लिखा था. तो समझ, चलिए अगला गाना कौन सा है, फिर ब्रेक भी लेनी है.

0: काश एक और जन्म ले लेते।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहिबा सबको। शहजादी साहिबा, अभी आपने वो गूंज उठी शहनाई का वो लता जी और रफी साहब का सुना है, क्या बात है, जबरदस्त डेट। और अब जो ये लगा हुआ है नया दौर का रफी साहब और आशा जी का, क्या बात है। आई डोंट थिंक देर इज अ बेटर ड्यूट, यू नो, फिल्म जो फिल्म पिक्चराइज किया हुआ है इन, इसको अगर आप देखो ना कलर वर्जन, क्या बात है, शी इज सो ब्यूटीफुल। वो ऋषभ साहब तो है ही, पर्सनालिटी जबरदस्त थी, लेकिन इसमें वैजयंती माला इतनी खूबसूरत लगती है, क्या बात है। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग्स, गॉड ब्लेस यू।
0: शबीर अहमद, वाकई वैजयंती माला का भी हुस्न ग्रेट था, बहुत कशिश थी उनमें, ऊपर से इतनी अच्छी अदाकारी, क्या रोल्स इन्होंने किए, चंचल के, गांव की लड़की के, क्या कमाली कर दिया, ट्रेजेडी हो जो भी हो। मंजुला गोरसिया ने कहा, कितनी बार आपको कहा है नया दौर नहीं चाहिए, हमें पुराना दौर चाहिए। नहीं, वो जोक कर रही थी कि जब भी मैं सुनाती हूँ ना नया दौर का गाना, वो कहती हमें पुराना दौर चाहिए। बिल्कुल वो पुराना ही था, सिर्फ नाम था नया दौर। भरत गंगाराम, परवीन जी, अदरक और शहद यानी हनी आपके लिए, आपको ठीक कर देगा, बस आप आजमाएं जी। ऑनेस्टली ये अदरक और ये ठीक हो गए, दिनों मेरा एतबार उठ भी गया था अदरक से और ये हनी से। मे बी आई हैव गॉट रियल अदरक एंड रियल हनी, लेकिन ये काम कर गया इस बार। हमने भी आपको बहुत मिस किया परवीन जी, सोनल मोदा, बट 3-4 दिन की ही बात थी, पर आज आपने अच्छे अच्छे गाने लगाकर दिल खुश कर दिया। थैंक्स फॉर द अमेजिंग लिस्ट। और सोनल मोदा, मेरा बहुत, मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, आखिर तक मैंने कोशिश की, तो कोई बात नहीं, वो आपका तो, आप तो बहुत ट्रैवल करती हैं, जब नैरोबी में होंगी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी।